विभूति पते हे लंबो यगदंत बेजुली जाय कतला कलेखनी मेरा दुख तर फिर दरती संसार सब देखनी हे विष्णु करुणा निधे हड़घड़ी लक्ष्मी संगई मालिने ये भी संबर हे हरि नरहरी एक भक्तले देखिने ये राधापति रुक्मिणी का पति प्रभु ये जानकी का पति मेरा दुख सबई बढ़ारी दिनोस बक्षिस मिलो सुख जति ये शंभु शिवे सती पति हरि श्रीमती गंगालिने ये जोगी हरि भक्त भक्त अरु का संताप सब नाचिने श्रीमती सचिलाउने मृगलिने तीन नेत्र रे शोभिने ये निर्वाण अनेक सेवक मोह ज्ञान बक्षी तिरुने ये राजा प्रकार का पिताजी एम का ये अंधकारी हरि ये छाया पति निशेश्वर पिता को छन हजुर का सरी ये सूर्य जगत भरी घुमी घुमी सबको बितर कर दिने सारा रोग नाश कराई बक्षन होस मेरा ऊपर दुख दिने हे देवी दुखनाशिनी भगवती हे विष्णु माया रमा हे नारायणी शरादे गिरिसुते धृति दिन होस ममा यो पञ्चयनाको चतुर्थी जौन जाना पर्दा छन् घरैमा बसी तिनका दुःख विनाश गरी सुख दिन यी देव कमर कसी यो पञ्चयनाको चरण कमलमा शिरलाई पहिले धरी विस्तार गर्छु म श्री हरिजीको सोलो भाकाले गरी अथ सरस्वती माया बिना पुस्तक धारिणी हंस बाहिनी विधान करो तुमे प्रथम भारती नाम द्वितीय सरस्वती तृतीय शारदा देवी चतुर्थ हंस बाहिनी पंचमत्व जगत माता खट बागेश्वरी सप्तम शैवाच कौमारी।

0: सामुदायिक पहुँच का लागि संचार रेडियो सैलुङ सामुदायिक एफएम 92.7 मेगाहर्ज।
1: अल्पाइन पब्लिक स्कूल सैलुङ समाचारको सहयात्री।

0: सैलो सामुदायिक एफएम 92.7 मेगाहर्ट्ज
1: अल्पाइन पब्लिक स्कूल सैलुङ समाचारको सहयात्री।